अज विष्णु शिवार्चित चक्रयुते द्विजराज कलांचित मूर्तिमती निज वैभव पोषित लोकतते परिपालय मां जमदग्निरते चतुरास्य गजास्य षडास्य मरुच्छत मन्युन